0: DJ Richard.
1: वीकेंड आ गया, बिल्स मंडे के लिए पेंडिंग है, जिम मेंबरशिप सिर्फ डोनेशन बन चुकी है और एक्स अभी भी हे लॉन्ग टाइम टाइप कर रहा होगा. इग्नोर एवरीथिंग बिकॉज टुनाइट सिर्फ डांस फ्लोर इम्पोर्टेंट है. वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. वॉल्यूम फुल, स्ट्रेस नल. लेट्स गो.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
3: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
4: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
2: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट। It's 8:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
10: On a ride.
11: Club Mirchi.

जो लोग बोलते हैं मैं सिर्फ दो गाने सुन के उठ जाऊंगा, वो ही सुबह तक डीजे को सॉन्ग रिक्वेस्ट्स भेजते रहते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योर्तिका, वंस अगेन लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और यौन दिखा आपके साथ. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. अगर नेबर्स अभी तक कंप्लेन नहीं कर रहे तो शायद वॉल्यूम अभी भी कम है दोस्तों.

तो वॉलेट को रेस्ट दो, वरीज को ब्लॉक करो और डांस मूव्स को अनलॉक करो. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयंतिका.

0: El amor. Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: It's 9:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
2: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
1: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain. Par Bachchan ek hi hota hai.
3: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
1: Moral of the story? Number one, सिर्फ एक ही होता है. एक ही होता है. जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.

जो लोग बोलते हैं मैं सिर्फ दो गाने सुन के उठ जाऊंगा, वो ही सुबह तक डीजे को सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर थिंग वंस अगेन, लेट्स गो।

पार्टी का गोल्डन रूल, अगर स्टेप गलत हो गया है तो स्माइल कर दो, लोग समझेंगे यही है नया ट्रेंड बेबी। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका।

0: get ready.
1: La palma de arriba.
2: वीकेंड पे फिटनेस बैंड भी कंफ्यूज हो जाता है, वॉकिंग काउंट करे या डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्लब मिर्ची

डांस स्टेप्स भूल जाएंगे, गाने चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो वीकेंड्स दिल से जिए जाते हैं वो याद ही रह जाते हैं। मैं हूँ ओयोंतिका, डीजे रिचर्ड को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। डांस सेफ, ड्राइव सेफ और अगले वीकेंड फिर मिलेंगे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका। टाटा।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

आपके डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ। वीकेंड का रूल नंबर वन, जो स्टेप नहीं आता उसको कॉन्फिडेंस के साथ करो, लोग कोरियोग्राफी समझ लेंगे। लेट्स गो।

लोग होते हैं, एक जो डांस करते हैं और दूसरा जो उनका वीडियो बना के ब्लैकमेल मटेरियल कलेक्ट करते हैं। Which one are you? Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi or Yontika?

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
3: ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची विद ऑयल ओम टेका एंड

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा ओनली ऑन 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2 इट्स हॉट
2: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
0: Cheap.

क्लब मिर्ची पे फिर से स्वागत है। डांस ऐसा करो जैसे सीसीटीवी भी बोले। वाह क्या कॉन्फिडेंस है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

Welcome back, people. Club Mirchi जा रही है DJ Richard and Mirchi और Yontika के साथ. This is the sound of the future. अगर आप डांस नहीं कर रहे तो कम से कम हेड नॉड तो कीजिए. कैलोरीज कंफ्यूज हो जाएंगी कि बर्न होना है या नहीं. Let's go once again.

वीकेंड का असली थेरेपी सेशन डांस फ्लोर। यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं, सिर्फ गुड म्यूजिक चाहिए। सो क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंथिका विथ यू। दिस इज योर वीकेंड डेस्टिनेशन।

0: get ready.
1: Las palmas arriba.
2: वीकेंड पे फिटनेस बैंड भी कंफ्यूज हो जाता है, वॉकिंग काउंट करे या डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्लब मिर्ची

डांस स्टेप्स भूल जाएंगे, गाने चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो वीकेंड्स दिल से जिए जाते हैं वो याद ही रह जाते हैं। मैं हूँ ओयोंतिका, डीजे रिचर्ड को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। डांस सेफ, ड्राइव सेफ और अगले वीकेंड फिर मिलेंगे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका। टाटा।

people, club मिर्ची जा रही है DJ Richard and मिर्ची और योंतिका के साथ. This is the sound of the future. अगर आप डांस नहीं कर रहे तो कम से कम हेड नॉड तो कीजिए. कैलोरीज कंफ्यूज हो जाएंगी कि बर्न होना है या नहीं. Let's go once again.

0: DJ Bridget.
1: वीकेंड आ गया, बिल्स मंडे के लिए पेंडिंग है, जिम मेंबरशिप सिर्फ डोनेशन बन चुकी है और एक्स अभी भी hey, long time, टाइप कर रहा होगा. इग्नोर एवरीथिंग बिकॉज टुनाइट सिर्फ डांस फ्लोर इम्पोर्टेंट है. वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका. वॉल्यूम फुल, स्ट्रेस नल. लेट्स गो.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.
7: On a ride.

सब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन दिखा आपके साथ. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. अगर नेबर्स अभी तक कंप्लेन नहीं कर रहे तो शायद वॉल्यूम अभी भी कम है दोस्तों.

Ladies and gentlemen, you are still not ready for this.

तो वॉलेट को रेस्ट दो, वरीज को ब्लॉक करो और डांस मूव्स को अनलॉक करो. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयंतिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची विद ऑयोंदिका एंड डीजे रिचर्ड, ओनली

People Club मिर्ची जा रही है DJ Richard and मिर्ची और योंतिका के साथ. This is the sound of the future. अगर आप डांस नहीं कर रहे तो कम से कम हेड नॉड तो कीजिए. कैलोरीज कंफ्यूज हो जाएंगी कि बर्न होना है या नहीं. लेट्स गो वंस अगेन.

मिर्ची में वेलकम बैक डीजे रिचर्डन मिर्ची और योंतिका आपके साथ। वीकेंड का रूल नंबर वन, जो स्टेप नहीं आता उसको कॉन्फिडेंस के साथ करो, लोग कोरियोग्राफी समझ लेंगे। लेट्स गो।

लोग होते हैं, एक जो डांस करते हैं और दूसरा जो उनका वीडियो बना के ब्लैकमेल मटेरियल कलेक्ट करते हैं। विच वन आर यू? क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योमिका।

Everybody.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आर के जूल्स।
1: मंगल आरती,
0: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब सपने बड़े होते हैं तो उनके साथ आने वाले चैलेंजेस और अप्स एंड डाउन्स के लिए मेंटली तैयार रहना क्यों जरूरी होता है, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि इस वक्त मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इलॉन मस्क है, जिसको सबने कहा था कि रॉकेट की कंपनी मत बनाओ, पागल हो गया तुम, या फिर इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी मत बनाओ, और दोनों उन्होंने बनाई, किसी की नहीं सुनी, और आज बहुत सक्सेसफुल हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन इस सारे सक्सेसफुल लोगों की मैंने कहानियां सुनी है, और मेरे पास भी एक इम्पॉसिबल ड्रीम है, विजनरी आइडिया है, एक जिद्दी सपना है, तो इस वक्त मैं कैसे आगे बढ़ूं?
4: वो जो सफल व्यक्ति है ना, उसकी एक यात्रा रही है। उस यात्रा में पेनफुल मोमेंट्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, फेलियर्स होते हैं, वो यात्रा करके उसको सफल का टैग मिला है। आज अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो कोई आपको सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, चैलेंज आ रहा है, फेलियर है, वो आपकी यात्रा है। आप अपनी यात्रा करें, जितनी भी चैलेंजिंग है आप उसमें फेथ रखकर, होप रखकर, सबको साथ में रखकर करें, फिर एक दिन आपको भी उस सफल का टाइटल मिलेगा। तो हमें वो टाइटल चाहिए, पर वो जर्नी भी तो करनी पड़ेंगे ना। देयर इज नोबडी हु इज सक्सेसफुल विदाउट हैविंग दोज पेनफुल मोमेंट्स वेयर दे वर लूजिंग फेथ, एंड इफ यू वांट टू गेट दैट टैग देन बी रेडी फॉर दैट अप्स एंड डाउन्स।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: विजनरी लीडर्स अपनी टीम को एक बड़े सपने और गोल के लिए इंस्पायर और कन्विंस कैसे करते हैं, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब हम एक डिसीजन की बात कर रहे थे और आपने कहा कि जब भी कोई रूल बनाओ आप, चाहे वो घर पे खाने का ही रूल हो कि भाई टेबल पे मोबाइल फोन मत लाओ, तो आपने कहा था कि सबकी सहमति से रूल होना चाहिए। और मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि रूल कभी कभी विजनरी लोग बना लेते हैं, लेकिन बाद में उनको टीम को इकट्ठा करके उस विजन पे लाना होता है। तो मुझे एक बात याद आ गई कि अमेज़न के जो जेफ बेजोस हैं, उन्होंने कई साल पहले एक 2016 में एक शेयर होल्डर के लेटर में उन्होंने लिखा कि भाई मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, आप उसे अग्री नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ आप गैम्बल करें मेरे डिसीजंस के साथ। बहुत ओपनली उन्होंने लिखा था। तो कभी कभी क्या होता है, विजनरी तो है लेकिन वो ऐसी बात बोल देता है तो आपको लगता है ये क्या बात हुई यार, पैसे तो मैंने डाल रखे हैं और ये चाहता है कि उसके सारे के सारे विजन पे मैं गैम्बल करूं। आज क्योंकि द गैम्बल पेड ऑफ, उनके बारे में बात होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमें नहीं पता कि आगे काम करेगा कि नहीं, तो क्या मैं इस पे विश्वास कर सकता हूं या नहीं, या क्या ये ऐसा इंसान है जो आगे कुछ काम करेगा या नहीं, या मैं ही वो इंसान हूं जो गैम्बल लेना चाहता है। हाउ डू आई टेक अ कॉल, क्योंकि सहमति का इंतजार मत करो वरना कुछ नहीं होगा, इज वॉट जेफ बेजोस बिलीव्स इन। लेकिन ज्यादातर हमें बोला जाता है सबकी सहमति ले लो तो सेफ रहोगे।
4: सी, पहली चीज इसमें यह है कि जब आप ऐसा किसी को कहते हैं ना, तो आपको भी उस चीज पर बहुत कन्विक्शन होता है। कभी कभी आपके मना आपके मन और वर्ड्स में इतना कन्विक्शन होता है, वो चीज सामने वाले को कन्विंस करती है वो गैम्बल लेने के लिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग, वो बहुत उनको फेथ होता है। वो फेथ की एनर्जी भी सामने वाले को कन्विंस कर देती है। हमें कई बार अपने पर इतना फेथ नहीं होता।
3: सही बात है।
4: अगर हमें उस पर 100% फेथ है, वो फेथ के लिए कई बार कहते हैं कि स्टोरी सुनाते हैं कि सब ना एक गांव के अंदर बहुत समय से बारिश नहीं थी, तो सब जैसे भगवान को प्रे कर रहे थे बारिश होने के लिए, और एक दिन तय किया कि हम सब मिलकर के हवन करेंगे कि आज तो बारिश होनी है। तो वो 100-200 लोग थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही बच्चा छाता लेकर गया।
3: सही बात, उसे यकीन था,
4: उसको यकीन था
3: कि
4: इस चीज से ये होना ही है, बाकी सब नहीं लेकर के गए। सो दैट फेथ इन योरसेल्फ इन व्हाट यू आर डूइंग इज एन एनर्जी दैट कन्विंसेस द अदर पर्सन आल्सो, इसलिए वो इतना बड़ा गैम्बल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
3: ब्यूटीफुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हर जिद बुरी होती है या सही दिशा में की गई जिद ही सफलता का रास्ता बन सकती है, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: स्टीव जॉब्स हो, जेफ बेजोस हो, एलन मस्क हो, अपना हावर्ड शुल्ट्स जिसने स्टारबक्स शुरू किया, जॉर्ज लुकस जो स्टार वॉर्स की पूरी उन्होंने बनाई एक्सेट्रा, ये सारे वो हैं जो जिद्दी लोग हैं जिनके साथ काम करना कोई नहीं चाहता। ये सारे लोग विजनरी और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कमाल है, आज लोग एग्जांपल देते हैं। ज्यादातर जब हम बहुत बड़ी इनोवेशन के बारे में बात करते हैं ना, वो लोग होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, जो किसी की बात नहीं सुनना चाहते, जो जिद्दी के अलावा रूड होते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी राय नहीं चाहिए, हम जो कह रहे हैं चुपचाप वो करो क्योंकि हमें पता है क्या करना है। तो वो दे आर नॉट वेरी नाइस पीपल टू वर्क विथ, बट वो ऐसी चीज आपको बना के दे देते

0: देते हैं जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। हाउ डू यू देन से कि भाई अच्छा काम करने वाला भी मिलना चाहिए और अच्छा विजनरी भी साथ में होना चाहिए?
1: तो ये कम हो पाता है ना, मना नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। तो ये सारे लोग या जो भी अभी एक हम लोग भी बहुत उनको नजदीक से तो नहीं जानते, आई एम श्योर इन लोगों के बारे में भी अच्छी बातें करने वाले बहुत आपको मिलेंगे। सेम व्यक्ति के क्रिटिक्स भी बहुत मिलते हैं
0: और चाहने वाले भी बहुत मिलते हैं। जिन्होंने उनसे सीखा वो उनको चाहेंगे।
1: हम उनको ब्रैकेट में तो नहीं डाल सकते क्योंकि पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड यू ओनली जितना उनका पर्सपेक्टिव अलाउ करता है, दैट इज वन थिंग। तो वो ही, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सारे ही क्रिटिक्स आपको मिलेंगे, अप्रिशिएट करने वाले भी होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप सफल जब कहते हैं तो वो सफल के कई मायने भी होते हैं। अगर किसी ने कोई बहुत अच्छी चीज़ इन्वेंट करी है, कुछ बहुत अच्छा बनाया है, तो वो सफल हैं। लेकिन किस कैटेगरी में सफल हैं? अपने वर्क प्लेस पर फाइनेंशली सफल हैं, वर्क प्लेस पर सफल हैं, वो एक सफल बिजनेसमैन है, वो एक सफल जो भी उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, पर वो जरूर सफल व्यक्ति भी है, वो जरूरी नहीं है।
0: बट वो जज करने वाला कौन है?
1: जज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट सक्सेस, वो राइट रॉन्ग की जजमेंट की बात नहीं है, पर अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है या आपके अपने बच्चों से ही बात नहीं हो रही है या दो भाइयों के बीच में ही झगड़ा है या आपके मल्टीपल डिवोर्स हैं, तो समझ में आता है कि इमोशनल लेवल पर आप इतने सफल नहीं है। ठीक है, आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत सफल होंगे, आप बाहर आपने बहुत अच्छा एक
0: कमा लिया होगा
1: एंड इफ दैट इज गुड इनफ फॉर यू इट इज ओके। बट मोस्ट लोगों को सब कुछ चाहिए ना, उनको खुशी भी चाहिए, शांति भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए और धन भी चाहिए, नाम मान शान भी चाहिए। अगर धन नाम मान शान आपके लिए सफिशियंट है तो इट इज ओके, पर आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी जिसके लिए ये सफिशियंट है।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: ग्रैटिट्यूड की आदत हमारी सोच और जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कुछ दिनों पहले मैंने एक कमाल की एक रील देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि भैया ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है, तो सोने से पहले तीन चीज जरूर करो। एक तो ग्रेटफुल रहो, एक फॉरगिवनेस मांगो, और तीसरा यूनिवर्स से अगर कुछ मांगना हो तो बोलो कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो प्लीज अगर हो सके तो मुझे दें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं रोज रात को सोने से पहले कोशिश करता हूँ। एक चीज मेरे दिमाग में आई कि जब मैं ग्रैटिट्यूड मांगता हूँ तो दो तीन चीजों के लिए ग्रेटफुल होता हूँ मैं। जब मुझे फॉरगिवनेस मांगनी होती है तो मैं एक दो लोगों से जिनको भी मैंने हर्ट किया है दिन में थ्रू माय थॉट्स वर्ड्स और एक्शन, वो मैं फॉरगिवनेस मांगता हूँ। लेकिन जब मुझे मांगना होता है अबंडेंस में यूनिवर्स से, तब लंबी लिस्ट होती है, 30-40 की लिस्ट होती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मांगने में भी हम शर्म नहीं करते, लेकिन जब हम इतनी सारी चीजें मांग रहे होते दुनिया से, भगवान से, यूनिवर्स से, क्या वो वाकई आएगी या उसकी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए?
4: सी, जब आपने कहा कि मैं यूनिवर्स को कह रहा हूँ मैं तैयार हूँ, तो यूनिवर्स को कहना नहीं पड़ता, आपकी एनर्जी अपने आप मैच हो जाती है। दैट इज व्हाई वी डोंट गेट व्हाट वी वांट, वी गेट हु वी आर।
3: लवली, ब्यूटिफुल।
4: सो जो आप हैं, जिस कॉन्शियसनेस तक आप पहुंच गए हैं, जहां आप रेडिएट कर रहे हैं, वो आप चाहें या न चाहें,
3: वो मिलेगा आपको,
4: वो यूनिवर्स को देना ही है।
3: अच्छा और बुरा दोनों।
4: हाँ, यहाँ तो हम ज्यादा अच्छे की बात कर रहे हैं, पर दोनों। जैसे आई लेटली मेट समबडी जिनको बहुत फेम है, बहुत बहुत फेम है, एंड ही सेड कि दिस इज द लास्ट थिंग आई वॉन्ट, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, मैं अपनी साधना में बहुत खुश था, लेकिन अब ये जो इतना फेम है ये एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि उनके भाग्य में वो चीज़ है,
3: वो आएगी,
4: आप उसको रोक ही नहीं सकते हैं। तो ये भी कहना यूनिवर्स को कि मैं तैयार हूँ, उसकी भी ज़रूरत एक्चुअली होती नहीं है। जब हम तैयार हो जाते हैं तो वो चीज़ें अपने आप आने लगती है, वी स्टार्ट ग्रेविटेटिंग इन दोज डायरेक्शन ऑटोमेटिकली।
3: जैसा आपने एग्जांपल लिया कि कई बार आपके पास जब कुछ बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो कई बार इंसान कहता है कि ये अगर ना मिले तो अच्छा होता या मेरे पास नहीं होता। तो ज़्यादातर जिनके पास वो सामान आ जाता है, चीज़ आ जाती है, नाम, फेम, शान जो है वो आ जाती है, तब उन्हें नहीं चाहिए, ऐसा क्यों होता है?
4: सब ऐसे नहीं है, जिनके पास आती है उनको चाहिए, वो क्रेव भी करते हैं। इनफैक्ट वो हर इंटरव्यू में कहेंगे कि मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसा चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। पर कहीं ऐसे
5: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब आप किसी का भला करना चाहें, लेकिन लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगें, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपने बहुत खूबसूरत एक बात कही थी मुझे कि जब आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपको भगवान ने दान दिया, जैसे फेम है या आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें, तो आपको उसको गुड के लिए यूज करना चाहिए, सोशल गुड के लिए, वापस गिव बैक करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये सारी चीजें मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो उसको यूज करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं भला तो करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मेरा ही फायदा उठाने के लिए बैठे हैं, तो आप इस कश्मकश में होते हैं कि मैं इसको कैसे प्रैक्टिस में लाऊं। मैं मदद तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए?
4: ये हमेशा कहा जाता है, दान पात्र देख करके देना चाहिए, दान करना चाहिए, लेकिन पहले ये चीज आपको भी देखनी पड़ेगी कि वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
3: लेकिन मेरा काम तो दान करना है, मैं सामने वाले का गुण या अवगुण क्यों देखूं?
4: गुण अवगुण नहीं की बात नहीं है, लेकिन जब आप कुछ भी आ जाए बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप समझदारी से तो करते हैं ना, अपनी रीति से तो आप हर चीज को ठोक बजा करके देखते हैं। आज हम एक चीज भी मार्केट में खरीदने जाते हैं
3: तो 100 बार देखते हैं क्या चीज है इसमें,
4: उसमें हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम तो कप लेकर के आना था, वो उसमें छेद है तो मैं उसमें मैं क्या करूं। तो आप जब कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो जहां तक आपकी समझ है
3: उतनी हमें देख परख
4: उतनी तो देख परख करनी चाहिए, बाकी उसके बाद तो फिर ठीक है, उसके बाद तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके, जिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जहां भी हम करना चाहते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कर्म हमारा है तो कॉन्सिक्वेंस भी हमें फेस करना पड़ेगा। तो दान कहते हैं पात्र देखना चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा, तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Positivity koi location thodi hai ki map pedala aur pahunch gaye. It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपने कभी सही फेथ और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझा है? आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कुछ समय पहले ना हम फेथ की बात कर रहे थे और आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ज्यादातर जब इंसान के पास एक बहुत अजीब आइडिया होता है, इनोवेटिव डिजाइन होता है, जिद्दी होते हैं बहुत, तो उनमें बहुत क्लैरिटी होती है, बहुत फेथ होती है अपने उस आइडिया में, और वो अपने आप को बहुत कन्विंस्ड फील करते हैं, इसलिए बाकी लोगों को भी कन्विंस कर पाते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है जो लोग गलत रास्ते में भी उतरते हैं ना, उनको भी बहुत फेथ होता है, तो वो बहुत कन्विंस्ड होते हैं और बाकियों को भी बहुत कन्विंस करा पाते हैं। तो इसमें कैसे अलग करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो शायद सही नहीं है? जैसे बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, वो सही है गलत है उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत कन्विक्शन के साथ लोगों को बताते कि भैया तुम आ जाओ, तुम तीन लोगों को लाओ और ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो वो भी तो बड़े कन्विक्शन से बात करते हैं। फ्रॉड जो करते हैं जो, वो भी बड़े कन्विक्शन से बात करते हैं।
4: हाँ, तो डिटर्मिनेशन एक गुण है, लेकिन उससे पहले भगवान के पास जब जाते हैं तो सतबुद्धि मांगते हैं ना।
3: हाँ,
4: दृढ़ता बाद में आती है आपको कोई चीज करनी है, पर पहले आपको सत बुद्धि चाहिए कि आप ये तो डिसाइड कर सके कि जो दिशा है वो राइट है कि रॉन्ग है।
3: हाँ,
4: तो वो तो बात ठीक है, आपके पास दृढ़ता की शक्ति थी तो आप रॉन्ग में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, पर पहले जो आपका रास्ता है वो तो ठीक होना चाहिए ना, तो आपकी मंजिल भी ठीक होगी। आप उतने डिटर्मिन्ड तरीके से गलत करेंगे तो उतनी ही डिटर्मिनेशन से आपका भाग्य भी लौट कर आएगा।
3: हाँ, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ फेथ और डिटर्मिनेशन से दुनिया नहीं चलती, आपको अपना रास्ता सही चूज करना पड़ेगा। अगर रास्ता सही चूज नहीं किया,
4: पहली चीज वो है,
3: तो भाग्य उल्टा,
4: मंजिल तो पता होनी चाहिए ना कहाँ जा रहे हैं, और वो मंजिल तो ठीक होनी चाहिए। प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, वो स्टेप्स हैं उसके,
3: लेकिन पहले रास्ता चुनना,
4: पहले तो रास्ता होना चाहिए कि किस रास्ते पर जाना है, उसके लिए सतबुद्धि चाहिए, फिर वो क्लैरिटी होने के बाद दृढ़ता चाहिए कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके।
3: तो टेक द रोड लेस टेकन तो बहुत जरूरी है, जो हम सुनते आते हैं, लेकिन वो रास्ता सही भी है या नहीं वो भी हमको देखना जरूरी है।
4: एब्सोल्युटली।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, बबलू वर्मा जो हैं वो सुरेश वर्मा के बेटे हैं, बक्शी का तालाब लखनऊ से लिख रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 से 7:30 तक अपनी कार ड्राइव करते हुए स्कूल जाते समय सुनता हूं, और ग्रेजुएट 2008 में मैं कर रहा था तो मेरे एनसीसी के सर ने मुझे ऑलवेज बी पॉजिटिव का थॉट दिया और हर घटना में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ, मैं ये सोचता भी हूँ। आज तक मेरे साथ जो भी हुआ सब अच्छा होता हुआ ये मैं ये सोचता हूँ। मेरा प्रश्न सिस्टर श्रेया से यह है कि हम जो योजना बनाते हैं वो कार्य लगातार नहीं हो पाता और कुछ और ही हो जाता है, ऐसा क्यों?
4: हम कई बार ये सबको सिखाते हैं कि अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, और उसके बाद भी हम कई बार देखते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा
3: जी।
4: तो हमें लगता है मैंने जैसा सोचा वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि लॉ भी है संकल्प से सिद्धि। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक फैक्टर जो हमें दिखाई नहीं देता पर हर समय काम कर रहा है
3: जी।
4: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरकनेक्टेड है
3: जी।
4: तो जो हमने पास्ट में किया था, जो एनर्जी हमने भेजी थी, जो कर्म हमने किया था, वो कई बार लौट करके आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन कि आपके घर में कोई बीमार है, आप अच्छा सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप हर बार जब जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि नहीं अभी ठीक नहीं है या पैरामीटर्स ठीक नहीं दिखाई दे रहे, तो आपको लगता है मैं तो सही सोच रहा हूँ फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं
3: जी।
4: हम सही सिर्फ इसलिए नहीं सोचते हैं कि हम सही सोचेंगे तो बाहर की जो सिचुएशन है वो हमेशा ही चेंज हो जाएगी
3: जी।
4: क्योंकि बाहर की जो सीन है वो उस व्यक्ति का भी कार्मिक अकाउंट है, आपका भी कोई पुराना कार्मिक अकाउंट है, लेकिन फिर भी सही सोचना क्यों है? क्योंकि फिर भी सही सोचने से कम हमारा मन तो शांत और स्टेबल है, और जब हमारा मन शांत और स्टेबल है तो जो भी चैलेंज होगा हम उसको फेस कर पाते हैं। There is also a possibility कि आपने बिल्कुल सही सोचा, उसके बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हुई। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ पास्ट का कार्मिक अकाउंट है या कोई बीमारी है, लेकिन अगर वो इंक्रीज भी हो जाती है टू एन एक्सटेंट, वो शरीर भी छोड़ देते हैं, तो भी अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप इतने बड़ी सिचुएशन को भी बहुत स्टेबिलिटी से फेस करके उनको दर्द भरी विदाई देने की जगह दुआओं भरी विदाई दे पाएंगे। सो ट्रू, जरूरी नहीं है हर चीज हमारे अनुसार हो, बिकॉज दैट वन फैक्टर, वो वन फैक्टर जो है पास्ट का जो हमें याद नहीं रहता, लेकिन हम सोल ऑन अ जर्नी है, तो वो सोल ने जो जो कर लिया है, जो एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स में भेज दी है, वो किसी ना किसी रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, धन का पेपर, डिफिकल्ट रिलेशनशिप, कोई चैलेंज के रूप में आता है, आज सही सोचेंगे तो वो सेटल हो जाएगा, लेकिन आज भी अगर गलत सोचेंगे सो देयर चांसेस कि आप उसको और बढ़ा रहे।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अब अगला सवाल जो है सिस्टर श्रेया, वो पारमिता सेन शर्मा भवानीपुर कोलकाता से आया है। वो कहती हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, मगर किसी सिचुएशन के कारण मेरी बेटी जो है उसको मैं हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में बताती हूँ और हमेशा यही सिखाती हूँ, लेकिन आजकल वो हॉस्टल में रहती है, मुझसे दूर रहती है, और मैं देख रही हूँ कि बहुत एंग्शियस रहती है, परेशान रहती है, एग्जाम के पहले बीमार पड़ जाती है, रिजल्ट के बारे में सोचती है, जबकि मैंने कभी भी उसको ना मार्क्स के लिए ना रिजल्ट के लिए प्रेशराइज किया है। आजकल मैं देख रही हूँ वो कॉम्पिटिशन की तरफ भी हुई है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है, और मुझे लग रहा है कि एंग्जाइटी जो है वो उसके अपने फादर के साइड से मिली है, हालांकि मैंने उसको उससे दूर रखने की कोशिश की है। मैं क्या करूं?
2: कभी कभी हम सारी सही गाइडेंस देने के बाद भी अगर वो एंजाइटी से गुजर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आजकल बच्चे खुद भी अपने ऊपर प्रेशर डालने लगते
1: बिल्कुल।
2: हैं। कभी कभी होते हैं हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, कई बार वो ही अपने को कंपेयर करने लगते हैं,
1: क्योंकि आसपास उनके बहुत प्रेशर होता है, बाकी सारे बच्चे वैसे होते हैं,
2: बहुत ज्यादा कम्पेटिटिव वर्ल्ड है, और आपको लगता है कि अगर आप उस कॉम्पिटिशन में नहीं उतर पाते सो मे बी यू आर नॉट समथिंग। आप अपनी सेल्फ वर्थ भी उससे डिसाइड करते हैं। सो फर्स्टली एज अ पेरेंट आप ये नहीं सोचे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत करके क्या होता है, जब भी हम बच्चे के अंदर कुछ देखते हैं तो हम उसका ब्लेम खुद पर लेना चाहते हैं। पेरेंट्स में ये बहुत ज्यादा हो जाता है, हम गिल्ट में जाने लगते हैं, हम उसका ब्लेम लेने लगते हैं, हमें लगता है कि हमने शायद कुछ राइट नहीं किया।
1: सही बात है।
2: तो वो जरूरी नहीं है, बहुत इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस है, पीयर का इन्फ्लुएंस है, जिस प्रकार के इन्फॉर्मेशन वो कंज्यूम करते हैं उसका इन्फ्लुएंस है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस है। सो हर एंजाइटी मे हैव नथिंग टू डू विद यू। नाउ द सेकंड थिंग इज, बट इट इज अ फैक्ट कि वो उनकी बेटी उस चीज से गुजर रही है और वो हेल्प करना चाहते हैं।
1: जी।
2: पहली हेल्प यही होती है कि उसकी एंजाइटी को देख देख कर मदर को एंशियस नहीं होना है।
1: जी, ये बहुत जरूरी है।
2: जो वो कहीं पर उनके उससे पता चल रहा है कि उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आने लगा है। मदर और डॉटर ऐसे कनेक्टेड होते हैं, पेरेंट चाइल्ड की हर वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुंचता है, इसीलिए इस रिश्ते में बहुत अटैचमेंट होती है, पर जब तक डिटैचमेंट नहीं हो आप हेल्प भी नहीं कर सकते।
1: सही बात है।
2: इसलिए आपको पहले डिटैच होना पड़ेगा। हर आत्मा एक अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर होती है, हर बच्चे के जीवन में उसके उतार चढ़ाव होते हैं, उसका कार्मिक अकाउंट होता है, उसके अनुसार उसके आने वाले जीवन में चैलेंजेस भी होते हैं और प्राप्तियां भी होती है। एज अ पेरेंट, एवरी पेरेंट यही चाहता है कि मेरे बच्चे की जर्नी परफेक्ट हो, भले मेरे जर्नी में कितना भी उतार चढ़ाव था इट इज ओके, पर उसके जीवन में नहीं हो। वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक अलग सोल ऑन हर जर्नी है। पेरेंट को थोड़ा ट्रस्टी बनने की जरूरत है। हम लोग थोड़ा ओनरशिप में चले जाते हैं, मेरा बच्चा,
1: बहुत बढ़िया।
2: हाँ, ओनरशिप है ना, मेरा बच्चा है, परफेक्ट होना चाहिए, एंशियस नहीं होना चाहिए, इतने मार्क्स आने चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, वट एवर आई हैव, मैंने अंदर एक इमेज देख लिया कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। आप ओनर नहीं है, आप ट्रस्टी है। ये अपने को रोज सुबह याद दिलाना चाहिए कि वो एक डिफरेंट सोल है। उसका जो रोल है वो बच्चे का है, मेरा जो रोल है एज अ पेरेंट है, और ये बहुत ब्यूटीफुल रोल मुझे मिला है मेरे बच्चे को सस्टेन करने के लिए। सो हैव टू प्ले इट रियली वेल। हाउ आई प्ले इट वेल इज, वन, आई डोंट गेट अफेक्टेड। इट टेक्स लॉट ऑफ पावर कि उसकी नेगेटिविटी मुझे इफेक्ट नहीं करे। सेकेंड, आप उससे बात करें, कुछ अच्छी वीडियोस, कुछ अच्छे मैसेजेस उनको भेजें जो उनको एम्पावर करें। थर्ड, उनको भी अपनी जर्नी में थोड़ा नेविगेट करने दें। कई बार गिर करके भी हम खड़ा होना सीखते हैं,
1: ये बहुत जरूरी भी है, वरना हम अपनी जिंदगी उन पे थोप रहे होते हैं।
2: जी,
1: ये बहुत जरूरी है कि वो खुद सीखें।
2: मतलब उनके भी जीवन में कुछ सक्सेस, कुछ फेलियर्स, कुछ एक्सपीरियंसेस तो होंगे ना। जरूरी से ज्यादा वो होता ही है, आप कितना भी चाह लें।
1: सही बात।
2: आप कितना भी कोशिश करें, क्योंकि उनके ऊपर कई चीजों के इन्फ्लुएंसेस है ना। अब आप पीयर को नहीं हटा सकते, आप एनवायरमेंट को नहीं चेंज कर सकते, आप सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकते, तो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ इन्फ्लुएंसेस। आप एम्पावर करें कि उन इन्फ्लुएंसेस का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। आप उनके साथ पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करें, आप मेडिटेशन में करके उनको पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करें। वो कनेक्टेड है आपसे। आप भी मेडिटेट करेंगे तो वो वाइब्रेशन भी उनको पहुंचेगा।
1: बहुत बढ़िया।
2: मैंने घर में अगर एक भी मेडिटेट करता है जितने लोग उससे कनेक्टेड हैं वो सब अपलिफ्ट होते हैं, क्योंकि वो उनको याद करते हैं, वो अपलिफ्ट होंगे तो वो साथ साथ अपलिफ्ट हो जाएंगे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर उनकी फोटो भी देख कर पॉजिटिव विशेस भेजेंगे तो उनकी जिंदगी बहुत सुधार होगा।
2: डेफिनेटली, पर होता क्या है ना, कई बार उस बच्चे की एंजाइटी तो है लेकिन उसमें एडेड प्रेशर हो जाता है मदर की एंजाइटी,
1: वो नहीं करना,
2: वो अपना रास्ता नेविगेट कर लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पेरेंट्स की एंजाइटी है वो कांस्टेंट होती है, उसका एक इम्पैक्ट कंटिन्यूस पड़ता है, तो वो उसके लिए डबल हो जाती है।
1: बिल्कुल सही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
5: I am not going to bed with you ever again.
4: But why? What did I do?
5: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
4: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
5: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
4: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
5: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
6: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
4: अब मिर्ची खा.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अंग्रेजी में कहते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जे शब्दों में लखायेली वात नथी एनी समझण मेळवी, दैट मीन्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, लाइन ना वच्चे नी वात लखेली वाँचो, लखायेलू तो बधाज लोको वाँचे छे। गुड मॉर्निंग, सांभळी रह्या छो मिर्ची, हूँ छो कृतार्थ। घणी वखत छे ने जवाब ना मळवो, कोईकनो जवाब ना आवो, ए पण एक जवाब ज होय छे। ना बोलायेला शब्दोनी कीमत बोलायेला शब्दों करता घणी वधारे होय छे। जस्ट अ रिमाइंडर કે જો તમે કોઈકના જવાબની રાહ જોઈને બેઠા છો અને એ જવાબ નથી આવ્યો તો સમજી લેજો કે જવાબ ના છે। ફરી એકવાર રિપીટ કરું કે જો તમે બહુ જ લાંબા સમયથી કોઈકના જવાબની રાહ જોઈને બેઠા છો તો સમજી લેજો કે એમનો જવાબ ના છે। ભલે ને કોઈ પણ મેટરમાં તમે એ જવાબનો રાહ જોઈને કેમ ના બેઠા હો, પણ એ જવાબ ના છે। ના બોલાયેલા શબ્દોનું વજન બોલાયેલા શબ્દોના વજન કરતાં ખૂબ વધારે હોય છે। You are listening to Mirchi, hoon chu tamaro Kritarth. Good morning.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Pyari brides, kya dhoondh rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
4: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
3: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Island, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Autocars destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNT apply. Joy Autocars, world's favorite jeweler.
10: छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता मिर्ची सुनना है?
11: मिर्ची सुनना है, मिर्ची सुनना है।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Gambana. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
3: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही
3: हैं. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
4: हो आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: तमे मानो के ना मानो, तमे आजे जे जीवन जीवी रहा छो एना विषय मा तमे क्यांक ने क्यांक कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली विचार कर्यो हशे. टूक समय पहला, 2-4 वर्षना पहला, तमे आजे जे जीवन जीवी रहा छो ने ए क्यांक ने क्यांक विजुअलाइज कर्यु हशे. तमे खुश छो तमारा जीवन थी? આના બે જ જવાબ હોઈ શકે કે હા કા તો ના. જો તમે ખુશ છો તો બહુ સરસ, તમને જે જોઈતું હતું એ તમે અચીવ કરી લીધું. જો તમે ખુશ નથી તો પણ બહુ સરસ, કારણ કે હવે તમને ખબર છે કે શું કરવાનું. 5 વર્ષના પછી તમે ક્યાં હશો એ આજના દિવસથી વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાની શરૂઆત કરી દો. બીકોઝ ધીસ ઇઝ અ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવડ ફિનોમિનન. તમે આજે જીવનમાં જે પણ પોઝિશનના ઉપર છો, તમારા સંબંધોના જે પણ ઇક્વેશન છે, એ તમે ક્યાંક ને ક્યાંક યુનિવર્સના પાસેથી તમારા થોટ્સના વડે માંગેલા છે. તમે કહ્યું છે યુનિવર્સને કે મારે આ જ પ્રકારની લાઈફ જોઈએ છે. હવે તમને આ રાસ ખબર છે, હવે તમને આ વસ્તુ ખબર છે, તો આનો ઉપયોગ પોતાના બેટરમેન્ટના માટે કરજો. તમારું જે પણ કંઈ વિઝન હોય તમારા ફ્યુચરના માટે, વિચારો એવા જ રાખજો. યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, હું છું તમારો કૃતાર્થ. ગુડ મોર્નિંગ.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
10: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
9: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
14: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
15: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
15: अब मिर्ची खा.
17: Radio Mirchi, it's hot.

से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द

की बैटिंग वाह वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भरतनाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down. This is the Indian sound. Together so strong in God we trust. Yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: साहित्य वहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
4: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा। ते तू किस तरह टप आया?
3: अते एक वार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
5: बागी ते आशिक हद्दां सरहदां टप ही आउंदे ने।
3: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
6: रांझे दित्ते 12 साल मैं दित्ती आ जिंदगी।
3: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू फिल्म इश्कनामा।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोस डाउन द ग्राउंड, कोहली गोस आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
4: तारीखें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, पर कुछ गाने हमें एक पूरा जमाना याद दिला देते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के हॉटेस्ट टॉप 10 इंडिपेंडेंट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम। पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक और नंबर 10। उसके बाद नई नवेली एंट्री, जारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 9 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

0: ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी, और नई नवेली एंट्री डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। गाने आर्ट एक तरह से एक टिकट होते हैं टू अ मेमोरी, एंड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ आर ऑफ दोस कॉलेज डेज। ये बात कभी सोची है कि जब हम उस उम्र में थे, जब कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो हम सबसे बहादुर थे। उस उम्र में जो भी बनाया, जो भी सपने देखे, जो भी लिखा, आधा अधूरा या पूरा, उसमें एक चीज थी जो अब बाद में हम कहीं खो देते हैं, एंड दैट इज होप। वो हमारी जिंदगी का सबसे रॉ फेज होता है, जब हम ओवर कैलकुलेटिव नहीं होते कि इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, करियर बनेगा या नहीं, बस दिल में कुछ था और लिख दिया। एंड दैट्स व्हाई इन द म्यूजिक स्पेस एज वेल, अगर आप देखेंगे, सम ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स जो हमने देखे हैं इन द लास्ट 4-5 इयर्स हैव बीन दीज यंग गन्स। बिली आइलिश द ग्लोबल आइकॉन का एग्जाम्पल ले लो, उनका गाना ओशन आइस तब फटा जब वो सिर्फ 18 साल की थी। हमारी अपनी जीनी जो देहरादून से है, अब मुंबई में गाने बनाती है, उनके गाने लाइक सुकून, आशियाना, वो जनता के साथ कनेक्ट इसलिए ज्यादा करे बिकॉज उसकी राइटिंग बहुत ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी और ये रॉनेस कोई टेक्निक नहीं है या कोई हिम्मत नहीं है, या आई थिंक सोचने की हिम्मत है जो कहीं ना कहीं आई रियली फील वो उम्र अलाउ करती है। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम कभी ये हिम्मत खो देते हैं तो क्या वो वापस मिल सकती है, क्या हम जीरो पे आके वापस शुरू कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है लखनऊ से जिनका एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग्स जो जनता के दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है जो आपको रोक देगी, वो कहता है, परिंदा पिंजरे में इतने दिन रहा कि अब आसमान से ही डर लगता है। देयर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग, बट आई विल लेट यू सिट विद इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10 एज आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंजॉय।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: हेलो
2: एडवोकेट अतुल से बात करा दीजिए सर.
1: बोल रहा मत कौन
2: अतुल जी. अतुल जी मेरे को माफ करना, आपको डायरेक्टली फोन कर रहा हूँ. मैं परेशान बहुत हूँ. समीर बोल रहा हूँ एडवोकेट जी.
1: कितने नंबर दिया आपको मेरा?
2: नंबर के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, आपके पैर पकड़ता हूँ. मैंने आपका नंबर एक जान पहचान वाले से निकलवाया था.
1: ठीक है, काम में
2: वकील साहब. मेरी बीवी मेरे को धोखे दे रही है.
1: अच्छा.
2: मेरी बीवी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे को 7 साल से कंटिन्यूस धोखे दे रही है.
1: मेरे चैम्बर में आइए तो हम जरा बैठ के बात कर सकते हैं आपसे.
2: मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वकील साहब, मेरी जान को बचाओ. मेरे को पिछले हफ्ते भी धोखे देती है हमेशा.
1: किस टाइप का धोखा देती है?
2: मैं वही बता रहा हूँ. देखिए, चाहे मेरी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे मेरा अंडर

0: मेरे देखो वही धोखे देती है। क्या धोखे, इतना धोखे देती है यार। वो तो गंदा भी नहीं था अंडरवियर, उसको भी धोखे दे दिया उसने।
1: किसने नंबर दिया आपको ये फालतू मजाक करने?
0: दोस्त
1: ये फालतू मजाक क्या कर रहे हैं?
0: मजाक की बात नहीं है, बकवास की बात नहीं है, बेवकूफ बात है।
1: बेवकूफ
2: सर, सर बेवकूफ नहीं, उसको मुर्गा कहते हैं। अतुल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका मुर्गा बना दें, आपका मुर्गा बना दिया आप रेडियो मिर्ची में।
0: आप भी धोखे, ये देखो धोखे दे दिया।
2: बुरा ना माने, होली है, मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
10: इसलिन न्यू जर्सी। Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19 July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNT apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
3: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
11: नंबर 7।
12: हाउ चुप कर, लंघ जावे कोल दी तू, संग जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: ट्रैश किंग की आवाज में एक गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने हर्ष नुसी की आवाज में उन्हीं के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन वाला गाना सुना, गाने का नाम साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो स्वागत है आपका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। म्यूजिक आर्ट है, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, एंड एक म्यूजिक का फॉर्म जो सबसे ट्रू है इन द वे इट एक्सप्रेसेस इज हिप हॉप। ये जॉनरा ना किसी स्टूडियो में पैदा नहीं हुआ था, ये वहां से आया है जहां लोगों को माइक नहीं दिया जाता था लेकिन दिल में कहानियां बहुत हैं। जहां तकलीफ कोई सुन नहीं रहा है तो एक्सप्रेशन म्यूजिक बन गया। हर कंट्री का, सिटी का, एरिया का रैप का फॉर्म अलग होता है, कॉज वहां से जुड़ी कहानियां अलग होती है। दिल्ली हिप हॉप अलग है, मुंबई हिप हॉप अलग है, केरला का हिप हॉप बहुत अलग है, पर व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज फॉर्म्स इज द रियलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट के पोस्टर बॉय रहे हैं डिवाइन, जिनका असली नाम विवियन फर्नांडिस है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट गली बॉय जो मूवी बनी थी वो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने उस मूवी में कंसल्ट किया था, बहुत हेल्प करी थी, उनका म्यूजिक है बट वो उनके बारे में नहीं है। बट देयर आर सॉन्ग्स लाइक मेरी गली में जो पूरे देश ने पहली बार सुना ऑन अ बिगर लेवल, कॉज वो गली बॉय जैसी मूवी में आया। पर उसी साउंडट्रैक में एक गाना था कॉल्ड आजादी। इस गाने के प्रोड्यूसर है डब शर्मा, जो चंडीगढ़ का एक लड़का है जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, किसी फिल्म के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, बस अपने लिए। एंड द सॉन्ग समहाउ मेड इट टू अंकुर तिवारी, जो उस वक्त गली बॉय की म्यूजिक को सुपरवाइज कर रहे थे। एक मेल गया, एक मीटिंग हुई, एंड दैट सॉन्ग मेड इट टू द बिगेस्ट मूवी अबाउट एक्चुअल हिप हॉप। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज हैज कम आउट ऑफ द कल्चर। डब शर्मा डिवाइन का गाना, गाने का नाम है आजादी। हर बार सुन के गूज़बम्स आ जाते हैं। गाना इंडी टॉप 10 पर, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: एक तरफा तराजू
1: क्या
0: शू, तेरी हंसी मेरे आंसू
1: क्या शू,
0: घुट घुट की क्यों सांस लूं
1: क्या शू,
0: उसे देगा क्या हिसाब
2: तू? पिंजरा मजाल ने खाना, परिंदे आने उड़ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा।

0: ये गाना सुनने के बाद हाथ अपने आप सर पे चला जाता है. मैड रिस्पेक्ट टू डिवाइन फॉर दिस सॉन्ग, वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स इन देसी हिप हॉप. एट आरजे करण ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड क्विकली इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो. डिवाइन एंड करण औजला ने एक कोलैब करके एक एल्बम रिलीज करी थी आज से 2 साल पहले. जल्दी बताओ उस एल्बम का नाम क्या है. काउंटडाउन का अगले वाला गाना अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
7: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
9: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
11: Listener mein back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
13: It's 12:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
14: Ghana Indie Top 10.
15: Kanika ka saath on Mirchi.
16: Number 4.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां की आवाज में एक गाने का नाम है ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, इस हफ्ते भी दो पोजीशन ऊपर जम करके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ गाने इस हफ्ते हॉट होते हैं, अगले हफ्ते नहीं, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एड्रेस बन जाते हैं हमारे लिए, एड्रेस टू अ मेमोरी, अ ट्रिप टू नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
0: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है मायरी, साल 2000, एल्बम फिर धूम पलाश था इनकी आवाज में। जरा याद कीजिए यार वो जमाना, कैसेट की रील पेंसिल से घुमाना, इंतजार करते रहना कि मेरे वाला गाना आएगा। आई रिमेम्बर आई वॉज ऑब्वियसली इन स्कूल जब मैंने गाना सुनना शुरू किया था, बहुत अच्छी धुन लगती थी। एंड दैट लाइन, दैट बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी, शायद मैं इतनी छोटी थी दैट मैंने उसका मतलब ही नहीं समझा, एंड मैं बस बहुत इतराती थी ये गाना सुन के, सजती थी सवरती थी। एंड एज वी कीप ग्रोइंग अप वो गाने समझ में आने लगते हैं, उनके पीछे के मतलब बदलते जाते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे मायरी में वो अपनी माँ से ये कहानी बता रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया था, लेकिन नाउ इट ऑल साउंड्स सो ब्यूटीफुल दैट वो जिस लड़की की तारीफें कर रहे हैं, जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, जिसकी याद उन्हें आ रही है, वो अपनी माँ को बता रहे हैं। पर यही तो बात है, गाना नहीं बदला यार, हम बदल गए। गाना 1998 में बना था, फ्रंट मैन पलाश सेन की आवाज, यूफोरिया द बैंड, जिसने आज भी ऑलमोस्ट आफ्टर 45 इयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कभी कोई फिल्म का गाना नहीं किया। द रियल ओजी पोस्टर बॉयज ऑफ पॉप म्यूजिक, अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यूफोरिया द बैंड का गाना, गाने का नाम है मायरी, इज योर टिकट टू नॉस्टैल्जिया टुडे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

आई स्वेयर गाने आर लाइक मेमोरीज जो हमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. आई वॉज टेकन बैक टू माई चाइल्ड हुड होम बाई लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. पलाश सेन की आवाज में यूफोरिया द बैंड का गाना मायरी स्टिल हिट्स होम एग्जैक्टली हाउ इट यूज टू 10 years बैक और 20 years बैक. And that's why it's a classic. At RJ Kanega on Instagram par aao, koi bhi gaana from the 90s, 2000s, jo aaj bhi aapko lagta hai, it hits home, buddy. Mujhse aage share karo. Main aur Ashkai, my sound producer, hum aapke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now back to the countdown. Agle wale gaane ki bari. Gaane ka naam hai Dealer. Diljit Dosanjh ki awaaz, unhi ki composition. 18 hafton se is countdown par barkarar. Dealer is playing right next for you on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: Sana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe aap, bandi ka naam hai RJ Kanika, show ka naam hai Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री थी, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक था. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. फिर एक नई नवेली एंट्री, जारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी ऑन गाना नंबर 9. संजू राठौर का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 8. हर्ष नुसी का साड़ी सुन पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते था ऑन गाना नंबर 7. ऐश किंग का किनिया सोनी गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 6. In all honesty, ये गाना इस countdown का मेरा favorite गाना है. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी on गाना number 5. आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खा का ए अजनबी अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ऑन गाना नंबर 4. दिलजीत दोसांझ का डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. The top 2 songs of the week, yet again, वही शफल हो रहा है ऊपर नीचे 17 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर का गाना, मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, एक पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते शीशा इज ऑन गाना नंबर 1. ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 1 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
4: ज्यादातर फिल्में फ्राइडे को फेल नहीं होती, मंडे को होती हैं। फ्राइडे तो मार्केटिंग का दिन होता है, देन कम सैटरडे जो होता है क्यूरियोसिटी का दिन, लेकिन मंडे सच बोलता है। तब पता चलता है ऑडियंस से टिकट्स खरीदने आई थी या दिल देकर गई थी। और आज के जमाने में जहाँ हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म, कोई ना कोई गाना और कोई ना कोई नेक्स्ट बिग थिंग लॉन्च होता है, वहाँ मंडे से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं होता। इसलिए अब सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन से कहानियां नहीं लिखी जाती, वर्ड ऑफ माउथ लिखता है, रिपीट ऑडियंस लिखती है, और कभी कभी एक गाना या एक फिल्म अपनी असली जानी शुरू ही तब करती है जब उसका प्रमोशन खत्म हो जाता है। इस हफ्ते का मिर्ची टॉप 20 भी ऐसी ही कुछ कहानियों से भरा हुआ है। हाय, माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम एंड लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। और नंबर 20 इस हफ्ते भूत बंगला का ये गाना तू ही दिसता।
5: नंबर 20।

ओ बाय द वे, अरिजीत सिंह का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी एक ऐसा गाना जिसकी कहानी ने साबित किया कि जब ऑडियंस किसी फिल्म को अपना लेती है ना, तो उसे कोई मार्केटिंग कैंपेन हरा नहीं सकता। नंबर 19 पर दिस इज मस्कारा बाय AR रहमान एंड इशाद कामिल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं, मैं वापस आऊंगा। नंबर 19।

वैसे धुरंधर अगले साल नेशनल अवार्ड्स में कितनी बड़ी प्रेजेंस होने वाली है उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस हफ्ते नेशनल अवार्ड्स ने एक और फिल्म को गले लगा लिया, आर्टिकल 370, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, यामी गौतम। और पता है मुझे इस जीत में सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? बॉलीवुड यामी गौतम को हीरोइन बनाना चाहता था, यामी गौतम ने एक्टर बनना पसंद किया। जब सब ग्लैमरस फिल्म्स के पीछे भाग रहे थे, यामी ने कहानियां चुनी, अ थर्सडे, लॉस्ट, चोर निकल के भागा, द ब्रिलियंट हक एंड आर्टिकल 370, एक के बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस। एंड नन ऑफ द फिल्म्स हैड अ जौहर, अ चोपड़ा, अ भंसाली और इम्तियाज अली अटैच टू इट। और आज नेशनल अवार्ड ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, एक करियर को सर्टिफाई कर दिया। स्क्रीन पर सरनेम नहीं दिखता, सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है। नाउ यामी का करियर आसान रास्तों से नहीं गुजरा, शी हैड टू डू व्हाट एवरीवन डज। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी विद अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, सुजीत सरकार। फिल्म का नाम विकी डोनर। लोग इस फिल्म को आयुष्मान खुराना के लिए जानते हैं, बट इस फिल्म की असली स्थिरता यामी थी। इस फिल्म का वो गाना इसने हमें पहली बार बताया था कि एक नई एक्ट्रेस आ चुकी है। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम विकी डोनर, दिस इज पानी दा रंग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना
2: बना
1: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा
2: मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: हाँ जी कौन
3: हाँ जी कौन
4: हेलो किससे
3: बात करनी है
4: भैया किससे बात करनी है
3: भैया
4: नंबर चेक करके
3: दोबारा मिला
4: पागल
3: पागल पता नहीं कौन बोल रहा था
5: इको आ रहा है इको
4: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ
4: भैया नंबर
3: नंबर चेक के मिला
4: हेलो
3: हेलो क्यों परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार पता नहीं कौन है फोन करे जा रहा है फोन करे जा रहा है
4: भैया
3: अबे पागल हो गया क्या यार महंगा पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास
4: पागल
3: कहीं का
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया क्या नाम है सर आपका बुरा मत मानिएगा प्लीज
4: रवि
5: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ अब एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें एको नहीं आएगी
4: कुकड़ू को भाई को
5: बहुत परेशान कर दिया आपने
4: भाई
5: अब आप खत्म कर दो यार
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लायन मॉर्गेज The king of mortgage industry.
10: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
8: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
15: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी कंडीशंस अप्लाई
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है एक ही होता है जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17

एक वक्त था जब ये गाना टॉप 10 में था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म थिएटर से उतर रही है वैसे वैसे ये गाना भी काउंटडाउन में धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन नंबर 16 पर एक नई एंट्री है एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड मैसेकर फ्रॉम अल्फा एंड दिस बेसिकली इज अ डांस सॉन्ग विद योर टिपिकल वायर ऑफ ग्लैमर। लेकिन इस गाने को सुनते ही मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई, कभी कभी लगता है हम हिंदी गाने सुन ही नहीं रहे, हम इंग्लिश पॉप सुन रहे हैं, बस लिरिक्स हिंदी में है। जरा ये वाला

कब आखिरी बार ऐसा हुआ था कि आप किसी गाने का इंतजार कर रहे थे? फिल्म का नहीं, ट्रेलर का नहीं, सिर्फ एक गाने का। आजकल तो हर हफ्ते 10, 20, 30 नए गाने आ जाते हैं और हम सुनते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में उन्हें यूज करते हैं, और अगले हफ्ते एक नया गाना आ जाता है एंड वी रिपीट द साइकिल। लेकिन कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक छोटा सा टीजर आया था उस गाने का, जिसका लोग पागलों की तरह इंतजार कर रहे थे।

0: एंड फिर क्या था, बस सोशल मीडिया को जैसे करंट लग गया हो। रीजन सिर्फ गाना नहीं था, रीजन थे अरिजीत सिंह। जब अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, सच कहूं ऐसा लगा था जैसे एक दौर खत्म होने वाला है, हमारे जख्मों को अब मरहम कौन लगाएगा। फिर अमाल मलिक ने एक इंटरव्यू में ये बात कही।
1: 63 फिल्म से अमाल मलिक यानी मैं निकाला गया हूँ, पर एक आवारापन टू मिली उसपे मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। वो सारे फिल्मों का एक सूट समेत ऊपर वाले ने दे दिया, अब मेरा काम है उसमें बेस्ट करना। इतनी बड़ी लेगेसी है, सर पे एक तलवार है, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, मुस्तफा जाहिद, मोहित सूरी, इमरान हाशमी, सबने ग्रेट, प्रीतम दा का म्यूजिक, आई हैव टू डू माय बेस्ट। अभी अरिजीत सिंह वो गाना गाए तो उनकी मर्जी, नहीं गाए तो भी उनकी मर्जी, पर हिंदुस्तान के नंबर वन सिंगर मेरे भाई अरिजीत सिंह अगर गाएंगे तो मजा आ जाएगा।
0: शायद आपकी दुआएं कबूल हुई। मुझे नहीं पता कि अरिजीत ने अपना रिटायरमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया है, रिटायरमेंट से वो वापस आ गया है, या ये सिर्फ एक गाना है, एक एक्सेप्शन है। ऑनेस्टली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो बात मुझे इमोशनल कर गई वो ये थी कि स्ट्रीमिंग के जमाने में जहां हर चीज इंस्टेंटली मिल जाती है, एक गाने ने लोगों को फिर से इंतजार करना सिखा दिया। और उस गाने का असली हीरो सिर्फ अरिजीत नहीं, अमाल मलिक और अमाल की कॉम्पोजिशन भी है। तो फिर आओ कि एक छोटी सी याद इस गाने में इतनी खूबसूरती से पिरोई गई है, ये नॉस्टैल्जिया भी नया लगने लगता है। ऑफिशियली वे आवारापन अभी काउंटडाउन पर नहीं आया है, लेकिन एक बात लिख लीजिए, अगले हफ्ते जरूर आएगा और सिर्फ एंट्री नहीं मारेगा, दस्तक देगा। फिलहाल नंबर 14 पर जाइए सजना फ्रॉम धुरंधर 2। Right now, I'm going to play you Baby Do Die Do या Baby Do Die Do का गाना इश्क कमीना 2.0।
2: Number 13। कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

कि इंटरनेट भी ना कभी कभी लगता है सिर्फ शोर है, लेकिन फिर कहीं तभी एक सुबोध मिल जाता है। पंजाब का ये लड़का जो सालों तक दूसरों के गाने गाता रहा, कवर सॉन्ग्स बनाता रहा, इसी उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन लोग उसके गाए हुए गाने YouTube पे कवर कर रहे होंगे। सुबोध शर्मा के गाए कई कवर्स में से एक गाना था मिथुन का कंपोज किया हुआ, अ सॉन्ग व्हिच वाज संग बाय द किंग हिमसेल्फ अरिजीत सिंह। ये गाना सैयारा में अरिजीत का एक लौता गाना था, धुन।

0: किस्मत कब आपके लिए दरवाजा खोल देती है इसका कभी पता ही नहीं चलता। और जब मैंने ये सुना, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि आज वही आवाज बेजुनून के साथ आवारापन 2 जैसी आइकॉनिक फिल्म में डेब्यू कर रहा है। तब समझ आया, पहले ब्रेक मिलता था और फिर ऑडियंस मिलती थी, आज ऑडियंस पहले मिलती है फिर ब्रेक मिलता है। इमेजिन, जिस मिथुन के गाने को सुबोध कवर कर रहे थे, आज उसी मिथुन के लिए गाना गा रहे हैं। और सुबोध अकेला नहीं है, राघव चैतन्य कुछ वैसी ही कहानी जीत चुके हैं, वो भी इंटरनेट की ही देन है। आज कॉकटेल 2 का माशूका हर प्लेलिस्ट में है, लेकिन जिस गाने ने उन्हें सीधा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में ला खड़ा किया, वो था हुआ मैं फ्रॉम एनिमल, अ सुपर स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's on.

जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई उसी दिन एक और फिल्म ने आना था, पर वो फैसला बदल दिया गया। कभी कभी एक फिल्म का इंतजार नहीं होता, एक इंसान का इंतजार होता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार यश उन्हीं स्टार्स में से एक है। KGF के बाद 4 साल हो गए स्क्रीन पर उन्हें देखे हुए। बीच में टॉक्सिक की रिलीज डेट कितनी बार बदली, कभी शूटिंग का रीजन, कभी प्रोडक्शन का रीजन, कभी दुनिया की सिचुएशन का रीजन, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक बात मैटर करती है, दैट यश इज कमिंग बैक, और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, 2 फिल्मों में। ऑफकोर्स रामायण में वो रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मिलेगी टॉक्सिक, और जब इसका

0: टीजर आया था, सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर टॉक्सिक है क्या, व्हाट इज इट अबाउट। तो चलो इसका जवाब खुद यश से सुन लेते हैं।
1: इन इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट स्टेट ऑफ India was still under Portuguese control till 1961. So the story is set in that era where it was time where a lot of Portuguese were, Indians were there. So in between that, there was trade, a lot of port, business. So in that era, if there is struggle for power, greed, and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there is a lot of complex human emotions where we there's a deep love story in it, there's a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. So it's a very interesting package.
0: तो सेटिंग पुराने दौर की है, इसमें गैंगस्टर्स हैं, एक पावर स्ट्रगल है, प्यार भी है और साथ में रिवेंज भी, यानी एक प्रॉपर लार्ज देन लाइफ सिनेमैटिक मसाला यूनिवर्स। लेकिन टीजर के बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया था वो है इस फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि विशाल मिश्रा और राजशेखर की जोड़ी जब भी साथ आई है खाली हाथ नहीं गई। एनिमल में पहले भी मैं, एंड देन सयारा में तुम हो तो, और अब टॉक्सिक में तबाही। नाम भी वही, एनर्जी भी वही, और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाना बिल्कुल उसी स्केल पर सोचता है। बस एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसका वीडियो देखने वाले हो तो बच्चों को थोड़ा दूर ही रखिएगा, इट्स नॉट सेफ फॉर देयर व्यूइंग। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग इन द टॉप 10, और नंबर 9 यह टॉक्सिक का तबाही।
2: नंबर 9।

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था। मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी, और जैसे ही ये थीम बजी मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉट सी फिल्म लगती है। प्रिमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर इज शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, वी जस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम, द शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जाम्पल, चुनरी चुनरी, आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, and it has been sung by the flawless, the perfect Sonu Nigam. Mera rewind track of the week,
1: top 20 rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना
2: बना
1: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा
3: डे The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
4: Hello, ये हंसा से मेरी बात कर रहा हूँ भाई.
5: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
5: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
5: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे तीन लोगों ने आपको कॉल किया है. डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
5: मैंने अगर लगा रखा है, क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
5: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
5: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
5: है. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
4: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
5: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
5: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
5: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे
5: यार, आप लोग किसी दिन ना
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
12: इस फ्रेंडशिप डे प्लान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखो.
10: गेट रेडी फॉर दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टिवेट टैलेंट्स ब्रिंग यू एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद लाइव बैंड एंड सिंगर्स एंड ओपन डांस फ्लोर एंड अ प्रीमियम 3-course डिनर, ऑल जस्ट फॉर $65. फ्राइडे ऑगस्ट 7th, 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस फोर्ट्स. बुक नाउ, कॉल ज्योत्सना एट 732-997-2409.
13: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Number 5.

हर फिल्म मेकर का एक सपना होता है, एक ऐसी फिल्म बनाना जिसे लोग सालों बाद भी याद रखे। लेकिन फिर एक कहानी ऐसी भी है जिसे याद रखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बस याद रहती है। रामायण आज सिनेमा उस दौर में खड़ा है जहां उसके पास लगभग सब कुछ है, आईमैक्स, डॉल्बी एटमॉस, सीजीआई, कुछ लोग अल्ट्रा रियल, वर्चुअल प्रोडक्शंस, ग्रीन स्क्रीन्स, टेक्नोलॉजी। आज फिल्म मेकर्स पूरी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, समंदर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, शहरों को हवा में उड़ा सकते हैं, और वो सब दिखा सकते हैं जो कभी सिर्फ इमेजिनेशन हुआ करती थी। लेकिन फिर भी एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं है, रामायण को और बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि रामायण की ताकत कभी उसके विजुअल्स थे ही नहीं, उसकी ताकत थी उसके किरदार, उनके इमोशंस, उनके फैसले, उनकी वैल्यूज, और सबसे बढ़कर हर जेनरेशन का उस कहानी से अपने खुद का रिश्ता। इसलिए मुझे लगता है रामायण का असली चैलेंज कभी उसकी कहानी सुनाना थी ही नहीं, वो तो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। असली चैलेंज है सिनेमा उस कहानी में ऐसा क्या जोड़ता है जो पहले कभी किसी ने महसूस नहीं किया। अगर रणबीर कपूर, यश, सनी देओल और पूरी टीम ये कर गई तो ये सिर्फ एक कामयाब फिल्म नहीं होगी, ये इंडियन सिनेमा के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। लेकिन फिलहाल इस दुनियादारी वाले काउंटडाउन पर नंबर 4 पर इस हफ्ते है माशूका फ्रॉम कॉकटेल, लेकिन काउंटडाउन आगे बढ़ेगा गुरु रंधावा के गाने कहर के साथ, विच इज ऑन नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा.
6: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप आया.
5: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने.
7: बागी ते आशिक हद्दां सरहदां टप ही आउंदे ने.
5: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा.
8: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी.
5: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज़ गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नूं. फिल्म इश्कनामा.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है.
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. नंबर 2.

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है, बिकॉज द सॉन्ग इज आउट ऑफ द काउंटडाउन आफ्टर ऑलमोस्ट 60 वीक्स। लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा वाला, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। और वैसे हर जनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज्ड बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर वन, दिस इज गहरा हुआ नंबर वन।

इस गाने की गहराई में मैं कितने महीनों से डूबा हुआ हूँ एंड फिर भी आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बिकॉज मेरा टाइम अप हो चुका है बट रिमेम्बर आप और मैं यहाँ इसलिए मिलते हैं because we love our movies. So till the next time we meet on another episode of the Mirchi Talk 20, this is Suren, over and out. Mirchi Talk 20 Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: एडवोकेट अतुल से बात करा दीजिए सर.
3: बोल रहा मत कौन
4: अतुल जी. अतुल जी मेरे को माफ करना, आपको डायरेक्टली फोन कर रहा हूँ. मैं परेशान हुआ तो समीर बोल रहा हूँ एडवोकेट जी.
3: कितने नंबर दिया आपको मेरा?
4: नंबर के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, आपके पैर पकड़ता हूँ. मैंने आपका नंबर एक जान पहचान वाले से निकलवाया था.
3: ठीक है, काम में
4: वकील साहब. मेरी बीवी मेरे को धोखे दे रही है.
3: अच्छा.
4: मेरी बीवी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे को 7 साल से कंटिन्यूस धोखे दे रही है.
3: मेरे चैम्बर में आइए तो हम जरा बैठ के बात कर सकते हैं आपसे.
4: मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वकील साहब, मेरी जान को बचाओ. मेरे को पिछले हफ्ते भी धोखे देती है हमेशा.
3: किस टाइप का धोखा देती है?
4: मैं वही बता रहा हूँ. देखिए, चाहे मेरी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे मेरा अंडरवियर तक हो, वही धोखे देती है. था क्या धोखे, इतना धोखे देती है यार. वो तो गंदा भी नहीं था अंडरवियर, उसको भी धोखे दे दिया उसने.
3: किसने नंबर दिया आपको ये फालतू मजाक करने?
4: मजाक की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है. बेवकूफ
3: नहीं
5: सर, बेवकूफ नहीं, उसको मुर्गा कहते हैं. अतुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. अपने नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका मुर्गा बना दें. आपका मुर्गा बना दिया आप रेडियो मिर्ची में.
4: आप भी धोखे, ये देखो धोखे दे दिया.
5: बुरा ना माने, होली है, मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए
3: कुकड़ों को.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
12: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
12: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा.
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Listener mein back to back gana sunega.
6: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है.
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
9: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Hey. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
1: Hello,
2: ये हंसा से मेरी बात कर रहा हूँ भाई.
1: हेलो, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
1: हाँ जी.
2: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
1: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
2: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
1: मैंने क्या किया?
2: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे 3 लोगों ने आपको कॉल किया है, डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है, आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
1: मैंने अगर लगा रखा है, क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
2: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
2: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
1: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
2: दफा 300 ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
1: सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
2: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही हैं मेरे से?
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
2: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
1: हाँ बताइए
2: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
2: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2. Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
10: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington. जो भीड़

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता है।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
4: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा। ते तू किस तरह टप आया?
3: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
5: बागी ते आशिक हद्दां सरहदां टप ही आउंदे ने।
3: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
6: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
3: अरविंदर

0: ਖੈਰਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ।
1: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 5 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5.
4: ज्यादातर फिल्में फ्राइडे को फेल नहीं होती, मंडे को होती हैं। फ्राइडे तो मार्केटिंग का दिन होता है, देन कम सैटरडे जो होता है क्यूरियोसिटी का दिन, लेकिन मंडे सच बोलता है। तब पता चलता है ऑडियंस से टिकट्स खरीदने आई थी या दिल देकर गई थी। पर आज के जमाने में जहाँ हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म, कोई ना कोई गाना और कोई ना कोई नेक्स्ट बिग थिंग लॉन्च होता है, वहाँ मंडे से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं होता। इसलिए अब सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन से कहानियां नहीं लिखी जाती, वर्ड ऑफ माउथ लिखता है, रिपीट ऑडियंस लिखती है। और कभी कभी एक गाना या एक फिल्म अपनी असली जानी शुरू ही तब करती है जब उसका प्रमोशन खत्म हो जाता है। इस हफ्ते का मिर्ची टॉप 20 भी ऐसी ही कुछ कहानियों से भरा हुआ है। हाय, माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम एंड लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड। और नंबर 20 इस हफ्ते भूत बंगला का ये गाना तू ही दिसता।
5: नंबर 20।

ओ बाय द वे, अरिजीत सिंह का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी एक ऐसा गाना जिसकी कहानी ने साबित किया कि जब ऑडियंस किसी फिल्म को अपना लेती है ना, तो उसे कोई मार्केटिंग कैंपेन हरा नहीं सकता। नंबर 19 पर दिस इज मस्कारा बाय AR रहमान एंड इरशाद कामिल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं, मैं वापस आऊंगा। नंबर 19।

वैसे धुरंधर अगले साल नेशनल अवार्ड्स में कितनी बड़ी प्रेजेंस होने वाली है उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस हफ्ते नेशनल अवार्ड्स ने एक और फिल्म को गले लगा लिया, आर्टिकल 370, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, यामी गौतम। और पता है मुझे इस जीत में सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? बॉलीवुड यामी गौतम को हीरोइन बनाना चाहता था, यामी गौतम ने एक्टर बनना पसंद किया। जब सब ग्लैमरस फिल्म्स के पीछे भाग रहे थे, यामी ने कहानियां चुनी। अ थर्सडे, लॉस्ट, चोर निकल के भागा, द ब्रिलियंट हक एंड आर्टिकल 370, एक के बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस। एंड नन ऑफ द फिल्म्स हैड अ जौहर, अ चोपड़ा, अ भंसाली और इम्तियाज अली अटैच टू इट। और आज नेशनल अवार्ड ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, एक करियर को सर्टिफाई कर दिया। स्क्रीन पर सरनेम नहीं दिखता, सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है। नाउ यामी का करियर आसान रास्तों से नहीं गुजरा, शी हैड टू डू व्हाट एवरीवन डज। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी विद अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, सुजीत सरकार। फिल्म का नाम विक्की डोनर। लोग इस फिल्म को आयुष्मान खुराना के लिए जानते हैं, बट इस फिल्म की असली स्थिरता यामी थी। इस फिल्म का वो गाना इसने हमें पहली बार बताया था कि एक नई एक्ट्रेस आ चुकी है। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम विक्की डोनर, दिस इज पानी दा रंग।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
3: हेलो
4: हेलो
3: हाँ जी कौन
4: हेलो किससे
3: बात करनी है
4: भैया किससे बात
3: अभी किससे बात करनी है
4: भैया नंबर चेक करके
3: नंबर चेक करके दोबारा मिला पागल अरे पता नहीं कौन बोल रहा था
5: इको आ रहा है इको
4: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो जैन साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ
4: नंबर
3: चेक के मिला
4: हेलो
3: हेलो
4: भैया
3: क्यों परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार पता नहीं कौन है फोन करे जा रहा है फोन करे जा रहा है
4: भैया
3: अबे पागल हो गया क्या यार महंगा पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास
4: पागल
3: कहीं का
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया क्या नाम है सर आपका आप बुरा मत मानिएगा प्लीज
4: रवि
5: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें एको नहीं आएगी
4: कुकड़ू
5: भाई कुकड़ू बहुत परेशान कर दिया आपने
4: भाई
5: आप खत्म कर दो यार
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
12: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
14: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2
15: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
16: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
17: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Constantini and much more.
16: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
18: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
19: Listener mein, back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Mirchi Top 20.
20: ग्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 70.

एक वक्त था जब ये गाना टॉप 10 में था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म थिएटर से उतर रही है वैसे वैसे ये गाना भी काउंटडाउन में धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन नंबर 16 पर एक नई एंट्री है एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड मैसेकर फ्रॉम अल्फा एंड दिस बेसिकली इज अ डांस सॉन्ग विद योर टिपिकल वायर ऑफ ग्लैमर। लेकिन इस गाने को सुनते ही मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई, कभी कभी लगता है हम हिंदी गाने सुन ही नहीं रहे, हम इंग्लिश पॉप सुन रहे हैं, बस लिरिक्स हिंदी में है। जरा ये वाला

0: And then you got Abhishek Bachchan doing the rapping R&B. Notice kiya? Ye gaane Hindi mein zarur hain. Lekin inki body language, inka attitude, inki phrasing, sab kuch global pop ya R&B hai. Aur waise dekha jaye, isme koi problem nahi hai. वैसे भी म्यूजिक इवॉल्व होना चाहिए, बस कभी कभी दिल वो गाने ढूंढता है जो सिर्फ हिंदी में लिखे नहीं गए, हिंदी में महसूस भी किए गए.
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: दिस मॉर्गेज अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय लायन मॉर्गेज.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: Oh no!
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एवे, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
13: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
1: Only on Mirchi. It's hot. Number 50.
16: Say whoa!

कब आखिरी बार ऐसा हुआ था कि आप किसी गाने का इंतजार कर रहे थे, फिल्म का नहीं, ट्रेलर का नहीं, सिर्फ एक गाने का। आजकल तो हर हफ्ते 10, 20, 30 नए गाने आ जाते हैं और हम सुनते हैं, इंस्टाग्राम रील्स में उन्हें यूज करते हैं और अगले ही हफ्ते एक नया गाना आ जाता है एंड वी रिपीट द साइकिल। लेकिन कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक छोटा सा टीजर आया था उस गाने का, जिसका लोग पागलों की तरह इंतजार कर रहे थे।

0: एंड फिर क्या था, बस सोशल मीडिया को जैसे करंट लग गया हो। रीजन सिर्फ गाना नहीं था, रीजन थे अरिजीत सिंह। जब अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, सच कहूं ऐसा लगा था जैसे एक दौर खत्म होने वाला है, हमारे जख्मों को अब मरहम कौन लगाएगा। फिर अमाल मलिक ने एक इंटरव्यू में ये बात कही,
1: 63 फिल्म से अमाल मलिक यानी मैं निकाला गया हूँ, पर एक आवारापन टू मिली उस पे मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। वो सारे फिल्मों का एक सूत समेत ऊपर वाले ने दे दिया, अब मेरा काम है उसमें बेस्ट करना। इतनी बड़ी लेगेसी है, सर पे एक तलवार है, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, मुस्तफा जाहिद, मोहित सूरी, इमरान हाशमी, सबने ग्रेट, प्रीतम दागा म्यूजिक, आई हैव टू डू माय बेस्ट। अभी अरिजीत सिंह वो गाना गाए तो उनकी मर्जी, नहीं गाए तो भी उनकी मर्जी, पर हिंदुस्तान के नंबर वन सिंगर मेरे भाई अरिजीत सिंह अगर गाएंगे तो मजा आ जाएगा।
0: शायद आपकी दुआएं कबूल हुई। मुझे नहीं पता कि अरिजीत ने अपना रिटायरमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया है, रिटायरमेंट से वो वापस आ गया है, या ये सिर्फ एक गाना है, एक एक्सेप्शन है। ऑनेस्टली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो बात मुझे इमोशनल कर गई वो ये थी कि स्ट्रीमिंग के जमाने में जहां हर चीज इंस्टेंटली मिल जाती है, एक गाने ने लोगों को फिर से इंतजार करना सिखा दिया। और इस गाने का असली हीरो सिर्फ अरिजीत नहीं, अमाल मलिक और अमाल की कॉम्पोजिशन भी है। तो फिर आओ कि एक छोटी सी याद इस गाने में इतनी खूबसूरती से पिरोई गई है, ये नॉस्टैल्जिया भी नया लगने लगता है। ऑफिशियली वे आवारापन अभी काउंटडाउन पर नहीं आया है, लेकिन एक बात लिख लीजिए, अगले हफ्ते जरूर आएगा और सिर्फ एंट्री नहीं मारेगा, दस्तक देगा। फिलहाल नंबर 14 पर जाइए सजना फ्रॉम धुरंधर 2। राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्ले यू बेबी डो डाई डो या बेबी डू डाई डू का गाना इश्क कमीना 2.0।
2: नंबर 13। कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

इंटरनेट भी ना कभी कभी लगता है सिर्फ शोर है, लेकिन फिर कहीं तभी एक सुबोध मिल जाता है। पंजाब का ये लड़का जो सालों तक दूसरों के गाने गाता रहा, कवर सॉन्ग्स बनाता रहा, इसी उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन लोग उसके गाए हुए गाने YouTube पे कवर कर रहे होंगे। सुबोध शर्मा के गाए कई कवर्स में से एक गाना था मिथुन का कंपोज किया हुआ, अ सॉन्ग विच वॉज संग बाय द किंग हिमसेल्फ अरिजीत सिंह। ये गाना सैयारा में अरिजीत का एक लौता गाना था।

0: किस्मत कब आपके लिए दरवाजा खोल देती है इसका कभी पता ही नहीं चलता। और जब मैंने ये सुना, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि आज वही आवाज बेजुनून के साथ आवारापन 2 जैसी आइकॉनिक फिल्म में डेब्यू कर रहा है। तब समझ आया, पहले ब्रेक मिलता था और फिर ऑडियंस मिलती थी, आज ऑडियंस पहले मिलती है फिर ब्रेक मिलता है। इमेजिन, जिस मिथुन के गाने को सुबोध कवर कर रहे थे, आज उसी मिथुन के लिए गाना गा रहे हैं। और सुबोध अकेला नहीं है, राघव चैतन्य कुछ वैसी ही कहानी जीत चुके हैं, वो भी इंटरनेट की ही देन है। आज कॉकटेल 2 का माशूका हर प्लेलिस्ट में है, लेकिन जिस गाने ने उन्हें सीधा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में ला खड़ा किया, वो था हुआ मैं फ्रॉम एनिमल, अ सुपर स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: Train ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: ब्रॉट यू बाय दीप फूड्स। दीप फूड्स खाओ तो जानो। Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano.
8: This hour is brought to you by Raj Jewels.

0: जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई उसी दिन एक और फिल्म ने आना था, पर वो फैसला बदल दिया गया। कभी कभी एक फिल्म का इंतजार नहीं होता, एक इंसान का इंतजार होता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार यश उन्हीं स्टार्स में से एक है। KGF के बाद 4 साल हो गए स्क्रीन पर उन्हें देखे हुए। बीच में टॉक्सिक की रिलीज डेट कितनी बार बदली, कभी शूटिंग का रीजन, कभी प्रोडक्शन का रीजन, कभी दुनिया की सिचुएशन का रीजन, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक बात मैटर करती है, दैट यश इज कमिंग बैक, और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, 2 फिल्मों में। ऑफ कोर्स रामायण में वो रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मिलेगी टॉक्सिक। और जब इसका टीजर आया था सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर टॉक्सिक है क्या, व्हाट इज इट अबाउट? तो चलो इसका जवाब खुद यश से सुन लेते हैं।
1: इन इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टिल अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल टिल 1961. So the story is set in that era where it was time where a lot of Portuguese were, Indians were there. So in between that, there was trade, a lot of port, business. So in that era, if there is struggle for power, greed, and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there is a lot of complex human emotions where there's a deep love story in it, there's a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. So it's a very interesting package.
0: तो सेटिंग पुराने दौर की है, इसमें गैंगस्टर्स हैं, एक पावर स्ट्रगल है, प्यार भी है, और साथ में रिवेंज भी, यानी एक प्रॉपर लार्ज देन लाइफ सिनेमैटिक मसाला यूनिवर्स। लेकिन टीजर के बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया था वो है इस फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि विशाल मिश्रा और राजशेखर की जोड़ी जब भी साथ आई है खाली हाथ नहीं गई। एनिमल में पहले भी मैं, एंड देन सयारा में तुम हो तो, और अब टॉक्सिक में तबाही। नाम भी वही, एनर्जी भी वही, और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाना बिल्कुल उसी स्केल पर सोचता है। बस एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसका वीडियो देखने वाले हो तो बच्चों को थोड़ा दूर ही रखिएगा, इट्स नॉट सेफ फॉर देयर व्यूइंग। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग इन द टॉप 10, और नंबर 9 यह है टॉक्सिक का तबाही। नंबर 9।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था। मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी, और जैसे ही ये थीम बजी, मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉड सी फिल्म लगती है। प्रीमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, वी जस्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट टाइम, द शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जाम्पल, चुनरी चुनरी, आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, and it has been sung by the flawless, the perfect Sonu Nigam. Mera rewind track of the week.
1: Top 20 rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो
2: एडवोकेट अतुल से बात करा दीजिए सर।
1: बोल रहा मत कौन
2: अतुल जी। अतुल जी मेरे को माफ करना, आपको डायरेक्टली फोन कर रहा हूँ, मैं परेशान बहुत हूँ। समीर बोल रहा हूँ एडवोकेट जी।
1: कितने नंबर दिया आपको मेरा?
2: नंबर के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, आपके पैर पकड़ता हूँ। मैंने आपका नंबर एक जान पहचान वाले से निकलवाया था।
1: ठीक है, काम में
2: वकील साहब, मेरी बीवी मेरे को धोखे दे रही है।
1: अच्छा,
2: मेरी बीवी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे को 7 साल से कंटिन्यूस धोखे दे रही है।
1: मेरे चैंबर में आइए, तो हम जरा बैठ के बात कर सकते हैं आपसे।
2: मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वकील साहब, मेरी जान को बचाओ। मेरे को पिछले हफ्ते भी धोखे देती है हमेशा। मैं वही बता रहा हूँ, देखिए चाहे मेरी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे मेरा अंडरवियर तक हो, वही धोखे देती है। था क्या धोखे, इतना धोखे देती है यार। वो तो गंदा भी नहीं था अंडरवियर, उसको भी धोखे दे दिया उसने।
1: किसने नंबर दिया आपको ये फालतू मजाक करने?
2: दोस्त,
1: ये फालतू मजाक क्या कर रहे हैं?
2: मजाक की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है। बेवकूफ
3: सर, बेवकूफ नहीं, उसको मुर्गा कहते हैं। अतुल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, अपने नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका मुर्गा बना दें, आपका मुर्गा बना दिया आप रेडियो मिर्ची में।
2: आप भी धोखे, ये देखो धोखे दे दिया।
3: बुरा ना माने, होली है, मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए
1: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
8: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
9: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप आया?
8: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
10: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
8: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
11: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
8: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज़ गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू फिल्म इश्कनामा।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
15: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
16: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
16: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
18: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
19: Tera kya hoga, Kalya?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
19: Ab mirchi kha.
9: Radio Mirchi. It's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

हर फिल्म मेकर का एक सपना होता है, एक ऐसी फिल्म बनाना जिसे लोग सालों बाद भी याद रखें। लेकिन फिर एक कहानी ऐसी भी है जिसे याद रखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बस याद रहती है। रामायण आज सिनेमा उस दौर में खड़ा है जहां उसके पास लगभग सब कुछ है, आईमैक्स, डॉल्बी एटमॉस, सीजीआई व्हिच लुक्स अल्ट्रा रियल, वर्चुअल प्रोडक्शंस, ग्रीन स्क्रीन्स, टेक्नोलॉजी। आज फिल्म मेकर्स पूरी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, समंदर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, शहरों को हवा में उड़ा सकते हैं, और वो सब दिखा सकते हैं जो कभी सिर्फ इमेजिनेशन हुआ करती थी। लेकिन फिर भी एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं है, रामायण को और बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि रामायण की ताकत कभी उसके विजुअल्स थे ही नहीं, उसकी ताकत थी उसके किरदार, उनके इमोशंस, उनके फैसले, उनकी वैल्यूज, और सबसे बढ़कर हर जेनरेशन का उस कहानी से अपने खुद का रिश्ता। इसलिए मुझे लगता है रामायण का असली चैलेंज कभी उसकी कहानी सुनाना थी ही नहीं, वो तो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। असली चैलेंज है सिनेमा उस कहानी में ऐसा क्या जोड़ता है जो पहले कभी किसी ने महसूस नहीं किया। अगर रणबीर कपूर, यश, सनी देओल और पूरी टीम ये कर गई तो ये सिर्फ एक कामयाब फिल्म नहीं होगी, ये इंडियन सिनेमा के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। लेकिन फिलहाल इस दुनियादारी वाले काउंटडाउन पर नंबर 4 पर इस हफ्ते है माशूका फ्रॉम कॉकटेल, लेकिन काउंटडाउन आगे बढ़ेगा गुरु रंधावा के गाने कहर के साथ, विच इज ऑन नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin.
7: Iselin, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19 July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Iselin, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNT apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
8: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
5: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. नंबर 2.

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है, बिकॉज़ द सॉन्ग इज आउट ऑफ द काउंटडाउन आफ्टर ऑलमोस्ट 60 वीक्स। लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा वाला, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। वैसे हर जनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर वन, दिस इज गहरा हुआ नंबर वन।

0: इस गाने की गहराई में मैं कितने महीनों से डूबा हुआ हूँ एंड फिर भी आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बिकॉज मेरा टाइम अप हो चुका है बट रिमेम्बर आप और मैं यहाँ इसलिए मिलते हैं because we love our movies. So till the next time we meet on another episode of the Mirchi Top 20, this is Suren, over and out. Mirchi
1: Top 20. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: At 6:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Aruniya Mirchi. Radio Mirchi. It's on.
3: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center Piscataway. Aapne ane aapna parivar ne Guru Purnima ane Rudrabhishek Mahotsav ma sneh bharyu aamantran aape che. Shanivar 1 August e savare 10 vage Shirji Rudrabhishek ane sanje 5 vage Virat Deep Yagna. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांतकुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति 732-357-8200 जय गुरुदेव।
0: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
7: लिसनर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: DJ Bridget.
1: वीकेंड आ गया, बिल्स मंडे के लिए पेंडिंग है, जिम मेंबरशिप सिर्फ डोनेशन बन चुकी है और एक्स अभी भी hey, long time, टाइप कर रहा होगा. इग्नोर एवरीथिंग बिकॉज़ टुनाइट सिर्फ डांस फ्लोर इम्पोर्टेंट है. वेलकम टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनतिका. वॉल्यूम फुल, स्ट्रेस नल. लेट्स गो.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस। इस फ्रेंडशिप डे प्लान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखो।
8: गेट रेडी फॉर दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टिवेट टैलेंट्स ब्रिंग यू एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद लाइव बैंड एंड सिंगर्स, एन ओपन डांस फ्लो एंड अ प्रीमियम 3-course डिनर, ऑल जस्ट फॉर $65। फ्राइडे ऑगस्ट 7th, 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस फोर्ट्स। बुक नाउ, कॉल ज्योत्सना एट 732-997-2409।
9: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
11: on a ride.
12: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard.

वीकेंड का असली थेरेपी सेशन डांस फ्लोर. यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं, सिर्फ गुड म्यूजिक चाहिए. सो क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका विथ यू. दिस इज योर वीकेंड डेस्टिनेशन.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Inefficient.
4: Very complex.
5: Clumsy.
6: Confusion ही confusion.
1: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक. Software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
8: नो
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
12: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
11: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
12: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
14: अब मिर्ची खा।
16: Radio Mirchi, it's hot.
17: Ladies and gentlemen.
18: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
6: क्लब मिर्ची.